भाग 84। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का सातवां मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति में होती है जागरूकता। विवेकी, संस्कारी, संयमशील मनुष्य के लिए यह आवश्यक होती है। सम्यक स्मृति मनुष्य के मन और शरीर पर रखती है निरंतर पहरा, कुछ गलत न हो इसीलिए ली जाती है खबरदारी। परंतु होगी किसी की अवस्था बेहोश नशे की, दीवा स्वप्नों की, घोर अज्ञानता की, तो समझना सम्यक स्मृति का अभाव है। सम्यक स्मृति रखती है पहरा दुष्ट वासनाओं पर और देती है आकार विचारों को। आचरण की शुद्धता के लिए कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, जागरूकता, सदा सतर्कता, छोटे बड़े सूक्ष्म निरीक्षण के साथ सम्यक स्मृति प्रवमान हो। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का आठवां मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक समाधि, समाधि यानी चित्त की एकाग्रता। यह एकाग्रता पांच अवरोधक को दूर करती है। जो यह अवरोधक ध्यान खंडित करते हैं, लोभ, द्वेष, आलस्य एवं स्तुति, संशय, अनिश्चितता, ये पांच अवरोधक मनुष्य को समाधि से दूर ले जाते हैं और खंडित होती है ध्यानावस्था, जिससे आर्य अष्टांगिक मार्ग में व्यवधान उपस्थित होता है। इन पांच लालच, द्वेष, आलस्य तथा स्तुति, संशय और अनिश्चय से व्यवधान निर्मित होता है। वैसे प्राप्त की जाती है एकाग्रता और दी जाती है शिक्षा कुशल कर्म की। नष्ट की जाती है अकुशल प्रवृत्ति मन की। सम्यक समाधि संस्कारित करती है मन को अच्छे कर्मों के लिए। फिर आदत पड़ जाती है अच्छा विचार, अच्छे कर्म करने की। प्रेरणा मिलती है समाधि से निरंतर और मन संस्कारित, सक्षम तथा संपन्न होता है। बा तथागता तूने खोजा है संपूर्ण विश्व के विलय सृजन का कार्य कारण भाव। प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत पाली भाषा में, उसे पटिच्य समुत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण विश्व को अखंडित रूप से चलाने वाले संचालन चक्र। तूने निर्देशित किया संपूर्ण जीव सृष्टि के संचालन का चक्र। हुआ अधोरेखित पूर्ण स्पष्टता से संपूर्ण निसर्ग का, उनके संचालन का चक्र। तेरी खोज यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर यात्रा करने का मार्गदर्शन। प्रतित्य यानी अवलंबित, किसी के तो सहारे से आधार से निर्मित होना। समुत्पाद यानी वह मूल आधार यानी जन्म। कार्य है इसीलिए कारण है यानी कार्य कारण भाव। इस संकल्पना की श्रृंखला एक दूसरे में अटकी हुई कड़ी है। यह तूने दिखा दिया। वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर निर्विवाद रूप से, जैसा कि मिट्टी यानी उपादान और मटका हुआ निर्मिति कारण, लकड़ी है उपादान तो टेबल हुआ निर्मिति कारण, सुवर्ण हुआ उपादान और अलंकार हुआ निर्मिति कारण। अलंकार बनाते समय होता है सुवर्ण का विलय, मटके में मिट्टी का विलय और कुर्सी में लकड़ी का विलय होता है। और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बीज अंकुरित होने के लिए धान्य की होती है आवश्यकता, परंतु जब बीज अंकुरित होता है तब होता है विलय धान्य का। इसका अर्थ यह है कि धान्य के रूप समाप्ति से अंकुर का निर्माण होता है वृक्ष, और फिर होता है विलय यानी वृक्ष के निर्माण से अंकुर के रूप का विलय।
तेरे इस कार्य कारण भाव का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट है। ये है इसीलिए वो है, ऐसी श्रृंखला इस निसर्ग में अनुभव तथा निरीक्षण से दिखाई दे।

0: റേഡിയോ മന്ദാപൻ 90.8 FM, always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, अब तक हमने गुरु के ज्ञान और उनके कड़े अनुशासन की बात की, लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम में न भीगे तब तक वह रूखा होता है। कबीर कहते हैं कि जब गुरु की असीम कृपा होती है तो वह किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि प्रेम की वर्षा की तरह बरसती हैं। आज का दोहा इसी प्रेम की फुहार और उसके बाद भीगने वाले उस आनंद के बारे में है। श्रोताओं, हम सब प्यासे हैं, शांति के प्यासे, आनंद के प्यासे। कबीर आज बता रहे हैं कि वह प्यास कैसे बुझती हैं। जब भीतर की तैयारी पूरी होती है तो ऊपर से वह बादल बरसता है जिसका इंतजार हर साधक को रहता है। कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन राई।

0: इस दोहे में परमानंद का दर्शन है। कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का, परमात्मा का प्रेम, गुरु का स्नेह एक बादल की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के बरसता है। जब वह प्रेम हम पर बरसा आई, यानी मुझ पर बरसा, तो उसका असर क्या हुआ? अंतरी भीगी आत्मा, सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि मेरी आत्मा भीतर तक भीग गई। जब तक आत्मा प्रेम के रस में नहीं भीगती, तब तक जीवन में शुष्कता बनी रहती हैं, और जैसी यह रसमय होती हैं, हरी भई बनराई, मेरे भीतर की पूरी बनराई यानी रुतियों का उपवन हरा भरा हो उठा। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो विकार सूखे पड़े थे, जो मन उदास था, वह प्रेम की उस एक वर्षा से खिल उठा। जैसे पहली बारिश के बाद धरती से सौंधी खुशबू आती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही सुमिरन और प्रेम के मेल से साधक का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा केवल त्याग और तपस्या नहीं है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अध्यात्म केवल त्याग और तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम में अकंठ भीगने का उत्सव है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस प्रेम को महसूस किया है जिसमें भीगने के बाद कोई शिकायत बाकी नहीं रहती, जहाँ मैं मिट जाता है और केवल आनंद बचता है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस बंजर जमीन को प्रेम के दो घूंट पिलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 OV है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मींस क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग, हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ये बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, ये स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, ये कल्पना आई है मीन्स कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है। मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं। राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अब ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है या राम जी का वनवास है। अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते, और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हटके जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो राम राज्य चाहिए, हमें जो राम राज्य या गांधी जी को जो राम राज्य चाहिए, जो हम कहते हैं राम राज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। राम राज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श, और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है, और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं, और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन मावली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है, 700 साल पहले मावली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को मौली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया, वाक यज्ञ जो वाणी का यज्ञ जो रचा, उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।
2: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहां ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है, तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांसे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खळांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खळांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है, खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खल नायक रहता है। खल नायक क्या है, दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ एक, सिर्फ नायक है और उसमें जो खल नायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है, जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है, इसलिए सुर और असुर। जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है? गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज अच्छी है लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है, किसके सुर में गाना चाहिए? जो भगवंत है उसका सुर जो है, उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता, खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा अगर उसे अंदर, उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी? जे खलांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो ये शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा। और ये खालीपन जो है एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए। अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत, आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है? सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है वो भगवान जो है उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है। जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा। और ये सत्कर्म जो है तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है। ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा? भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है. ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज बॉडी. हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल. ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है? बॉडी तो है, शरीर है, लेकिन अंदर जो बीइंग मीन्स सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है. हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है? खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है. तो क्या करना चाहिए? जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से. वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार. ओम शांति.
3: हाय, मी आरजी स्वरा. आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उसपे हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट हमारा, एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा
1: आपने
0: सफर
1: वर्क किया, आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस।
0: मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है,
0: हाँ एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओ दिस इज माय थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स कि पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहाँ हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता है तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना है।
0: ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी,
0: नॉट रियली।
1: हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आप जनरेटिंग,
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इंफॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाली है। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ, सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठ कर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फला व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, यहाँ वहाँ गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहाँ वहाँ इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूँ ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही यू नो बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स. नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली इफेक्ट्स अस.
1: देखो पहले जो हम चीजें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल. पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे. तो इट वाज साइंटिफिक ना कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन.
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट, यू नो, लाइक हम सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह.
1: अभी हम क्या करते हैं सुबह उठकर, एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है. So the foundation of the day itself is wrong. On a different note. तो फिर उसके ऊपर expect करना कि positive thoughts generate हो, we are looking for the impossible. हमने वो अंदर information भरी नहीं. तो हमारी information जो हम भरते हैं और हमारे belief systems.
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम हैज टू बी वेरी राइट. एक्चुअली
1: वेरी राइट. एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सके
0: कि क्या
1: कि हम ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की जरूरत है.
0: अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, यू नो, टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन है.
1: टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है.
0: यस,
1: टेंशन होनी ही चाहिए. यू नो, टेंशन तो हर एक को है. यू नो, अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग, यू नो,
0: क्या टेंशन नहीं है,
1: कि दैट इज अबनॉर्मल. तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है. तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है. आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को. तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है.
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम?
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना. आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है. आपको मेरे बारे में नहीं पता, हमें अपने बारे में ही पता है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है बड़ी, वो बार बार बार बार उसको, और होनी ही चाहिए. तो इट्स कंसिडर लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन कि यू नो, जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं. अगर आप टेंशन के बिना बैठे हैं अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज,
0: आपको कोई टेंशन नहीं है. यू नो लाइक ऑफ कोर्स,
1: सो मेबी यू आर गुड फॉर नथिंग, या मेबी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है.
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो, कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर
1: पाओगे. जो सबसे पहला रॉन्ग, मतलब रॉन्ग कहे या जो भी, या बिलीफ सिस्टम है, वो है कि टेंशन नेचुरल है. You know, किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है. टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है. टेंशन नॉर्मल है. नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है?
0: नो, आई डोंट थिंक सो.
1: We accept it as the most common thing.
0: No, but if I think, no, we accept it because it's there.
1: Right. You
0: know? But like we have been thinking about it.
1: True.
0: But if we really think about it, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा pause दिया, मैंने सोचा कि it should not be natural.
1: हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक epidemic नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज, या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है. इट इज अननेचुरल, और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती. जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो, तो इमीडिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो, एंड द होल एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन.
0: बस छूट गई बच्चे की एग्जाम है, क्या होगा, अब
1: ट्रैफिक जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: you know, बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है. एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or...
0: तो ये tensions हैं.
1: हाँ, तो जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural. Natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है. You know, natural means what? जैसे चलना natural है. भागना
0: unnatural.
1: Natural is walking, yeah. तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड। एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग, दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है, और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी ना किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में। तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कंफर्टेबल। आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कंफर्टेबल? अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माय नेचुरल।
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना, दिस इज रॉन्ग।
1: क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे। आप देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 पॉइंट समथिंग और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है, दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे, 100 जैसे ही क्रॉस हो गया आप क्रोसिन लेंगे। यू सी, यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल। आई हैव दैट नॉलेज
0: प्रोसेस, वी हैव एक्चुअली टेकन इट कि टेंशन नॉर्मल है।
1: अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए, आप क्रोसिन लेते हैं, क्यों? रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है, क्योंकि कल you know I have to get back to work. अब टेंशन है, बढ़ रही है, डे बाई डे इट्स गेटिंग, लेकिन हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे,
0: नहीं ले रहे
1: क्यों? क्योंकि हमने यही नेचुरल है। तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए, तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ये तो नेचुरल है।
0: अच्छा, उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट्स,
1: या तो टेंशन। अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया, एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कॉजिंग पेन, आई डोंट वॉन्ट इट, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग ना कि इसको कैसे फिनिश करना है या वट एवर। मतलब मैं इलाज की तरफ ध्यान देना शुरू करूं, तब जब पता चले कि बीमारी है। लेकिन बीमारी को ही नॉर्मल समझ लिया, तो इलाज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वो एक रॉन्ग बिलीफ हमारी पूरी जीवन चिंता में बीत सकती है, क्योंकि हमने स्वीकार किया कि ये बीमारी नहीं है, ये ही

0: हैं, टेंशन इज नॉर्मल, ये हमने माना. दूसरा ये हम मानते हैं कि अगर हमें टेंशन है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. हर परफॉर्मेंस से पहले टेंशन होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए. स्टेज पे जाना है, थिएटर परफॉर्म करना है, गाना गाना है, यू शुड बी टेंस. बट आई इज इट अगेन,
1: क्योंकि मेजोरिटी पीपल टुडे फील कि अगर टेंशन नहीं होगी तो दैट इज आराम पसंद, यू नो, या कॉम्प्लेसेंसी, कि आप बिल्कुल लेड बैक हो जाएंगे. और अगर आप लेड बैक हो गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो दे वॉन्ट टेंशन टू क्रिएट दैट पुश
0: एनर्जी लेवल
1: इनसाइड, या उसको एड्रेनालिन ट्रिगर होता है ना अंदर आपके. इवन एक बच्चा अगर आराम से बैठा है और कल उसका एग्जाम है तो उसको बोला जाएगा तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हें एग्जाम है ना. एज अ ग्रोन अप हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस रिलैक्सेशन के अंडर होगी. ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की लेकिन एग्जाम के दिन वो टेंस्ड हो गया तो वो सब किए कराई चीज भूल जाता है. हम केयरलेस मिस्टेक्स कराते थे स्कूल में, आई स्टिल रिमेम्बर जी, आता सब था
0: लेकिन
1: एग्जाम के बाहर आने के बाद आपको लगता है ओहो ये गलत लिख दिया, आता सब था. एंड देन वी यूज्ड टू गिव इट द टर्म केयरलेस मिस्टेक. व्हाट इज केयरलेस मिस्टेक? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एफिशिएंसी लेवल वाज डाउन, सब कुछ आते हुए गलत लिखा हाथ ने, कंसंट्रेशन लेवल वाज डाउन क्योंकि टेंशन है.
0: एंग्जायटी,
1: तो एंग्जायटी परफॉर्मेंस को बढ़ा कैसे सकती है, इनहांस कैसे कर सकती है? वो तो हमेशा परफॉर्मेंस को डाउन ही लेकर जाएगी. आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस, आप जॉब करते हैं, आपको टेंशन है छोटी छोटी बातों की, वेदर इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स वर्क. तो जैसे ही टेंशन होती है माइंड की स्थिति कैसे हो जाती है, क्या फील करते हैं? व्हाट डू यू फील?
0: इट्स वेरी यू नो लाइक आप एनर्जी लेवल आपका लो हो जाता है, यू कांट परफॉर्म,
1: राइट? आपकी एकाग्रता शक्ति, कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से. निर्णय लेने की शक्ति,
0: डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे.
1: मेमोरी पावर,
0: फोकस
1: लूज हो जाएगा. मेमोरी पावर, आप यू विल टेंड टू गेट लिटिल इरिटेटेड मोर ऑफन, तो उससे आपके रिलेशनशिप्स. नब ये सब फैक्टर्स प्ले करते हुए अगर कोई कहे कि माय परफॉर्मेंस विल इंप्रूव व्हेन माय कंसंट्रेशन विल रिड्यूस,
0: हाउ
1: विल माय परफॉर्मेंस इंप्रूव?
0: एंड फाइनली टेंशन समवेयर हमें हेल्थ की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है उसको परेशान कर सकता है.
1: तो इतने आज जितने जैसे अगर आप स्टडी देखें कि इतनी एब्सेंटिज्म जो हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इतनी बीमारियों की वजह से हो रही है, इट्स मोर बिकॉज द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक. मानसिक जो दर्द है, मानसिक जो बीमारी है, उसकी वजह से वो शरीर के ऊपर असर ले रही है. तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है? मुझे ब्लड प्रेशर आज हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो सकती है? एंड यही अगर हम रिलैक्स्ड रहते हैं. लेकिन वो क्यों एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना, प्रेशर और टेंशन, ये दो चीजों को हमने मिक्स कर दिया. प्रेशर चाहिए, टारगेट चाहिए,
0: पुश करने के,
1: यू नो, इवन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर या इवन फॉर अ स्टूडेंट, हमें टारगेट चाहिए. जैसे एग्जाम है, ये एक टारगेट है. एग्जाम होता है तभी बच्चे पढ़ते हैं मेजोरिटी. अगर एग्जाम नहीं होता तो शायद हम उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते. लेकिन एग्जाम देने के लिए मुझे टेंशन चाहिए, दिस इज अननेसेसरी. सिमिलरली एक ऑफिस में एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, आपको इस इतनी सेल्स अचीव करनी है या व्हाटएवर करना है. लेकिन वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप रिलैक्स्ड होकर उसको अचीव करें या टेंस्ड रहकर उसको अचीव करें, ये हमारी चॉइस.
0: एक्चुअली एक और चीज ये कही जाती है कि टेंस रहेंगे तो आप माहौल भी टेंस क्रिएट कीजिए, एंड एवरीबॉडी विल बी टेंस एंड देन परफॉर्म करेंगे. बट आई थिंक समवेयर द ओवरऑल जो पूरा एटमॉस्फेयर,
1: ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे चेंज होते हैं, वी विल हैव टू ट्राई इट आउट. हमने दूसरा वाला शायद बहुत टाइम से देखा ही नहीं. आराम से काम होता कैसे है? और अभी का बिलीफ सिस्टम ये होगा, आराम से काम नहीं होगा जी,
0: शोर मचाना,
1: अगर शोर नहीं मचाएंगे जी कोई सुनेगा नहीं. तो ये जो बिलीफ सिस्टम सारे, वी हैव टू वर्क इट आउट एंड चेक इट, बिकॉज विद द दीज बिलीफ सिस्टम्स वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई द अदर वन, फिर देखें. अगर वो वाला नहीं ठीक लगा, गो बैक टू द ओल्ड वन, लेकिन इट विल वर्क.
0: एंड इन फैक्ट ऑफ कोर्स इट शुड वर्क बिकॉज़ इट हैज लॉजिक, यू नो.
1: एब्सोल्युटली,
0: अगर हम उसको लॉजिकल, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम सोचने लग जाएं, जो हमारी मान्यताएं बन चुकी हैं, उनमें अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठ के अगर सोचते भी हैं एक लम्हे को रुक के, सो वी रियलाइज देयर इज लॉजिक, यू नो, इफ वी लुक एट द अदर. एनदर थिंग व्हिच इज एसोसिएटेड विद टेंशन इज लाइक अगर टेंशन है, काम पे है, यूजुअली लोग क्या करते हैं या किसी सिचुएशन में है वहां से भाग जाएंगे. यू नो लाइक मूविंग अवे, मैं एक ब्रेक ले लूंगी, मैं वेकेशन पे चले गई, या मैंने चीज ही छोड़ दी, काम
1: या मैं उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दूंगी.
0: मतलब

0: तो बहुत बार ऐसा करती हूँ, यू नो कि लाइक ओहो प्लीज देयर इज टू मच ऑफ टेंशन, यू नो
1: इनसे नहीं मिलना, इनके पास नहीं जाना, सही बात है। कई बार लोग अपनी जॉब चेंज कर देते हैं कि इस जॉब में बहुत टेंशन है।
0: नो बट देन इज इट एस्केपिज्म रियली?
1: इट इज, बिकॉज उसके पहले एक और बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये बिलीफ जनरेट हो रहा है, और वो बिलीफ ये है कि दूसरे लोग मेरी टेंशन का कारण है। तभी तो मैं उन लोगों से किनारा करूंगी ना, अगर मुझे लगे आप मेरी टेंशन का कारण है तो बार बार आपसे मिलू मैं टेंस्ड हूँ, इससे अच्छा मैं आपसे मिलना बंद कर दू। क्यों? क्योंकि मैंने समझा आप मेरी टेंशन का कारण है। आप अभी आधे मिनट के लिए ट्राई कीजिए कि वर्तमान समय, एवरी वन कैन ट्राई आई थिंक, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्तमान समय मेरे जीवन में तनाव के कौन कौन से कारण है, बहुत छोटे से लेके बड़े तक। द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड, जो हम रीजन निकालेंगे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, सास बहू, पति, बच्चे, बॉस, व्हाटएवर, फाइनेंशियल क्राइसिस, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी, बट द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया, एंड ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सबसे बड़ा, कि माय स्टेट ऑफ माइंड इज बीइंग कंट्रोल्ड by other people and other situations.
0: Is being dependent on them.
1: It's totally. मैं बिल्कुल ठीक थी, आपसे मिली मुझे गुस्सा आ गया, मैं बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, आपने गलत कर दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया।
0: मैं तो ठीक ठाक थी, उसने कह दिया मुझे, तो मेरा, मुझे इरिटेशन हो गया।
1: आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आप मुझे अपसेट करते हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन, you are the cause of my suffering.
0: But how to remain unaffected actually?
1: No, it's not the question of affected, it is first the question, is the other person the source? I will have to understand that, evaluate any scene before yourself. Kya dusra vyakti source hai? When we work on this, what we understood was, dusre ne jo kehna tha usne wo keh diya, jo karna tha usne wo kar diya, uski baat ko lekar, now what I do with it,
0: how do I handle it,
1: is going to create my pain or pleasure or happiness or
0: destiny,
1: sadness, whatever,
0: again,
1: everything,
0: destiny.
1: My thought, it is not what you say to me, but it is what I do with what you say to me. You see, you will say and walk off, you finished your part. Ab main us baat ko lungi aur us baat ko किस तरह से परसीव करूंगी, किस तरह से समझूंगी, और उसको किस तरह से एनालाइज करके उसको बार बार रिपीट करती रहूंगी अंदर, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, एंड देन आई जनरेट माय फीलिंग आउट ऑफ इट। तो इट्स नॉट व्हाट यू सेड एंड यू वेंट अवे। आप साइंस में भी देखेंगे तो टेंशन का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस का, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर बाहर से आएगा, यस इट प्लेज अ लिटिल रोल, क्योंकि वो स्टिमुलस है, डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो हमें यही सिखाया जाता था तब कि अलग अलग मेटल्स हैं, एक शीट्स है मेटल के, और हर मेटल की शीट पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग निकलता था। क्यों? प्रेशर तो सेम था, क्योंकि डिनोमिनेटर प्ले कर रहा है। तो डिनोमिनेटर था रेजिलियंस, उस मेटल की उस स्ट्रेस को फेस करने की पावर,
0: इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था। इनफैक्ट
1: तो प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन रेजिलियंस डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर डिफरेंट निकला, एंड सेम इज एप्लीकेबल टू अस। एक ऑफिस में भी आप देख लीजिए, एक ही बॉस है, 10 जूनियर्स है, एक ही बॉस एक ही तरह से सबको डांटता है, लेकिन सबका रिएक्ट करने का तरीका
0: डिफरेंट
1: है। अगर बॉस कारण है उनकी टेंशन का, तो हर एक को इक्वल लेवल ऑफ टेंशन होनी चाहिए ना। बॉस तो एक ही था, आप सबने गलती भी एक ही कर दी, वो आए आप सबको डांट के चले गए, लेकिन आप सबने जो रिस्पॉन्ड किया,
0: जो रिएक्ट किया,
1: वो डिफरेंट था। एंड अगर 10 लोग होंगे तो 10 अलग अलग रिस्पॉन्स निकलेंगे, क्योंकि द रिस्पॉन्स इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टिम्युलस। जो बॉस आया बाहर से, ही वॉज द स्टिम्युलस, एंड हमने जो रिस्पॉन्ड किया, दैट्स द रिस्पॉन्स। लेकिन वो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स, उसके बीच में है फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स।
0: सो ओके, व्हाट वी गैदर एक्चुअली शिवानी विद आज की जो बातचीत है, उससे ये कि हमने आज एक बार फिर उस बात को जानने की कोशिश की कि हमारे थॉट्स जो जनरेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस से गुजर के हमारे डेस्टिनी गवर्न कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी लिखते हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग, बट देन दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली सीन, यू नो, कि एक थॉट जो, और अब मुद्दे की बात यह आती है कि थॉट जो जनरेट कर रहे हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स कर रहे हैं, जितने भी हम बिलीफ सिस्टम्स में जी रहे हैं। अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं, हम उन्हें ही सही मानकर चल रहे हैं, तो हमारे थॉट्स भी वही हो रहे हैं। अब एक और बात जो है कि थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, उसमें आपने कुछ तीन बातें बताई हमें,
1: पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम। जो भी हम अंदर इन्फॉर्मेशन समाचार इधर उधर से भरते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव है किसी के साथ, ये तीनों चीजें हमारे संकल्प की क्वालिटी को,
0: और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम हो जाता है, सही बिलीफ सिस्टम। और आज जो मुद्दा था वो टेंशन थी, यू नो, कि कहीं ना कहीं बहुत सी गलत मान्यताओं को लेके हम टेंशन के साथ जी रहे हैं। सबसे बड़ी गलत मान्यता जो नजर आई वो ये थी कि टेंशन नॉर्मल है,
1: राइट, बिल्कुल
0: सहज है, तो वो नहीं है सहज। हमें ये जानना है कि अगर हमें टेंशन हो रही है तो वो सहज नहीं है, वो असहज है, एबनॉर्मल है, उसे चेंज करना है, और उसे चेंज करना जरूरी है। एंड अनदर थिंग विच वी अंडरस्टूड टुडे इज लाइक कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे इस सिचुएशन के लिए या हमारी टेंशन क्रिएट करने के लिए, हम ही कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशन को, वो टेंशन क्रिएट करता है। तो चलिए ये बात, क्योंकि अब वक्त कम है, यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इससे जुड़े बाकी मुद्दों को भी अगली कड़ी में हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: ओम शांति। और इसके साथ आपको भी बता दें कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आप ही का प्रोग्राम है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा जज्बा है जो कुल बुला रहा है, जो कहना चाहते हैं आप कुछ, तो आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर टेंशन अपनी जिंदगी में हम नहीं रखेंगे और अगली कड़ी में इसी से जुड़े कुछ और खास मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ हम इस पूरी जो पूरा प्रोग्राम है उसमें जान रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं। और अगली कड़ी में शिवानी जी, हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो ईमेल्स आए हैं उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करें। तो आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।

लाख चौरासी। बा तथागता, आर्य अष्टांगिक मार्ग का सातवां मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति में होती है जागरूकता। विवेकी, संस्कारी, संयमशील मनुष्य के लिए यह आवश्यक होती है। सम्यक स्मृति मनुष्य के मन और शरीर पर रखती है निरंतर पहरा, कुछ गलत ना हो, इसीलिए ली जाती है खबरदारी। परंतु होगी किसी की अवस्था बेहोश नशे की, दीवा स्वप्नों की, घोर अज्ञानता की, तो समझना सम्यक स्मृति का अभाव है। सम्यक स्मृति रखती है पहरा दुष्ट वासनाओं पर और देती है आकार विचारों को। आचरण की शुद्धता के लिए कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, जागरूकता, सदा सतर्कता, छोटे बड़े सूक्ष्म निरीक्षण के साथ सम्यक स्मृति प्रवमान हो। बा तथागता, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आठवां मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक समाधि, समाधि यानी चित्त की एकाग्रता। यह एकाग्रता पांच अवरोधक को दूर करती है, जो यह अवरोधक ध्यान खंडित करते हैं। लोभ, द्वेष, आलस्य एवं स्तुति, संशय, अनिश्चितता, ये पांच अवरोधक मनुष्य को समाधि से दूर ले जाते हैं और खंडित होती है ध्यानावस्था, जिससे आर्य अष्टांगिक मार्ग में व्यवधान उपस्थित होता है। इन पांच लालच, द्वेष, आलस्य तथा स्तुति, संशय और अनिश्चय से व्यवधान निर्मित होता है। वैसे प्राप्त की जाती है एकाग्रता और दी जाती है शिक्षा कुशल कर्म की। नष्ट की जाती है अकुशल प्रवृत्ति मन की। सम्यक समाधि संस्कारित करती है मन को अच्छे कर्मों के लिए। फिर आदत पड़ जाती है अच्छा विचार, अच्छे कर्म करने की। प्रेरणा मिलती है समाधि से निरंतर और मन संस्कारित, सक्षम तथा संपन्न होता है। बा तथागता, तूने खोजा है संपूर्ण विश्व के विलय सृजन का कार्य कारण भाव। प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत पाली भाषा में, उसे पटिच्य समुत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण विश्व को अखंडित रूप से चलाने वाले संचालन चक्र। तूने निर्देशित किया संपूर्ण जीव सृष्टि के संचालन का चक्र, हुआ अधोरेखित पूर्ण स्पष्टता से संपूर्ण निसर्ग का, उनके संचालन का चक्र। तेरी खोज यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर यात्रा करने का मार्गदर्शन। प्रतित्य यानी अवलंबित, किसी के तो सहारे से आधार से निर्मित होना। समुत्पाद यानी वह मूल आधार यानी जन्म। कार्य है इसीलिए कारण है यानी कार्य कारण भाव। इस संकल्पना की श्रृंखला एक दूसरे में अटकी हुई कड़ी है, यह तूने दिखा दिया। वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर निर्विवाद रूप से, जैसा कि मिट्टी यानी उपादान और मटका हुआ निर्मिति कारण, लकड़ी है उपादान तो टेबल हुआ निर्मिति कारण, सुवर्ण हुआ उपादान और अलंकार हुआ निर्मिति कारण। अलंकार बनाते समय होता है सुवर्ण का विलय, मटके में मिट्टी का विलय और कुर्सी में लकड़ी का विलय होता है। और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बीज अंकुरित होने के लिए धान्य की होती है आवश्यकता, परंतु जब बीज अंकुरित होता है तब होता है विलय धान्य का। इसका अर्थ यह है कि धान्य के रूप समाप्ति से अंकुर का निर्माण होता है वृक्ष, और फिर होता है विलय यानी वृक्ष के निर्माण से अंकुर के रूप का विलय।
तेरे इस कार्य कारण भाव का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट है। ये है इसीलिए वो है, ऐसी श्रृंखला इस निसर्ग में अनुभव तथा निरीक्षण से दिख

0: Radio Man Bhavan 90.8 FM Always Heart Touching.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, अब तक हमने गुरु के ज्ञान और उनके कड़े अनुशासन की बात की, लेकिन ज्ञान जब तक प्रेम में न भीगे तब तक वह रूखा होता है। कबीर कहते हैं कि जब गुरु की असीम कृपा होती है तो वह किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि प्रेम की वर्षा की तरह बरसती हैं। आज का दोहा इसी प्रेम की फुहार और उसके बाद भीगने वाले उस आनंद के बारे में है। श्रोताओं, हम सब प्यासे हैं, शांति के प्यासे, आनंद के प्यासे। कबीर आज बता रहे हैं कि वह प्यास कैसे बुझती हैं। जब भीतर की तैयारी पूरी होती है तो ऊपर से वह बादल बरसता है जिसका इंतजार हर साधक को रहता है। कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। कबीर, बादल प्रेम का हम पर बरसा

0: टाइम। इस दोहे में परमानंद का दर्शन है। कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का, परमात्मा का प्रेम, गुरु का स्नेह एक बादल की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के बरसता है। जब वह प्रेम हम पर बरसा आई, यानी मुझ पर बरसा, तो उसका असर क्या हुआ? अंतरी भीगी आत्मा, सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि मेरी आत्मा भीतर तक भीग गई। जब तक आत्मा प्रेम के रस में नहीं भीगती, तब तक जीवन में शुष्कता बनी रहती हैं, और जैसी यह रसमय होती हैं, हरी भई बनराई, मेरे भीतर की पूरी बनराई यानी रुतियों का उपवन हरा भरा हो उठा। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो विकार सूखे पड़े थे, जो मन उदास था, वह प्रेम की उस एक वर्षा से खिल उठा। जैसे पहली बारिश के बाद धरती से सौंधी खुशबू आती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही सुमिरन और प्रेम के मेल से साधक का पूरा व्यक्तित्व महक उठता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा केवल त्याग और तपस्या नहीं है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि अध्यात्म केवल त्याग और तपस्या नहीं है, यह तो प्रेम में अकंठ भीगने का उत्सव है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस प्रेम को महसूस किया है जिसमें भीगने के बाद कोई शिकायत बाकी नहीं रहती, जहाँ मैं मिट जाता है और केवल आनंद बचता है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस बंजर जमीन को प्रेम के दो घूंट पिलाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मींस क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग, हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ये बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, यह स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, ये कल्पना आई है, मीन्स कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है। मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं। राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अभी ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है? अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर? कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो राम राज्य चाहिए, हमें जो राम राज्य, या गांधी जी को जो राम राज्य चाहिए, जो हम कहते हैं राम राज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। राम राज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श, और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है, और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं। और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग। जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है, 700 साल पहले माउली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया, वाक यज्ञ जो वाणी का यज्ञ जो रचा, उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।
2: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहाँ ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है? तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांसे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खळांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खळांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है? खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खल नायक रहता है। खल नायक क्या है? दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक, सिर्फ नायक है और उसमें जो खल नायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है? जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है, इसलिए सुर और असुर। जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है? गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज अच्छी है लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है, सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है? किसके सुर में गाना चाहिए? जो भगवंत है उसका सुर जो है, उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता, खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा अगर उसे अंदर, उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी? जे खलांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो यह शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा। और ये खालीपन जो है, एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए, अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत, आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है? सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है, वो भगवान जो है, उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है। जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा। और ये सत्कर्म जो है, तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है। ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा? भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है. ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज बॉडी. हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल. ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है? बॉडी तो है, शरीर है, लेकिन अंदर जो बीइंग मीन्स सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है. हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है? खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है. तो क्या करना चाहिए? जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से. वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार. ओम शांति.
3: हाय, मी आरजे स्वरा. आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट हमारा, एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा
1: आपने
0: सफर
1: वर्क किया, आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस
0: मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है हमारा,
0: एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओ दिस इज माय थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स कि पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहाँ हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता है तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना है।
0: ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी
0: नॉट रियली।
1: हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आप thought generating?
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इंफॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाली है। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ, सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फलां व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, यहाँ गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहाँ वहां इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूँ ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी, कि सही सुनना चाहिए, सही यू नो बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स. नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली इफेक्ट्स अस.
1: आप देखो, पहले जो हम चीजें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल. पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे. तो इट वाज साइंटिफिक ना, कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन.
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट, यू नो, लाइक हम सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह.
1: अभी हम क्या करते हैं, सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है. So the foundation of the day itself is wrong. On a different note. तो फिर उसके ऊपर expect करना कि positive thoughts generate हो, we are looking for the impossible. हमने वो अंदर information भरी ही नहीं. तो हमारी information जो हम भरते हैं और हमारे belief systems.
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम हैज टू बी वेरी राइट. एक्चुअली
1: वेरी राइट. एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सके
0: कि क्या
1: कि हम ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की जरूरत है.
0: अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, यू नो, टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन है.
1: टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है.
0: यस,
1: टेंशन होनी ही चाहिए. यू नो, टेंशन तो हर एक को है. यू नो, अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग, यू नो,
0: क्या टेंशन नहीं है,
1: कि दैट इज अबनॉर्मल. तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है. तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है. आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को. तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है.
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम.
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना. आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है बड़ी, वो बार बार बार बार उसको, और होनी ही चाहिए. तो इट्स कंसिडर लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन कि यू नो, जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं. अगर आप टेंशन के बिना बैठे हैं अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज,
0: आपको कोई टेंशन नहीं है. यू नो, लाइक ऑफ कोर्स
1: सो मेबी यू आर गुड फॉर नथिंग, या मेबी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है.
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ यू नो, कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे.
1: जो सबसे पहला रॉन्ग, मतलब रॉन्ग कहें या जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो है कि टेंशन नेचुरल है. यू नो, किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है. टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है. टेंशन नॉर्मल है. नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है?
0: नो, आई डोंट थिंक सो.
1: But you know, we accept it as the most common thing.
0: No, but if I think, no, we accept it because it's there.
1: Right.
0: You know? But like we have been thinking about it.
1: True.
0: But if we really think about it, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा pause दिया, मैंने सोचा कि it should not be natural.
1: हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक epidemic नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज, या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है. इट इज अननेचुरल, और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती. जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो, तो इमीडिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो, एंड द होल एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन.
0: बस छूट गई बच्चे की, एग्जाम है, क्या होगा,
1: ट्रैफिक जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: यू नो, बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है. एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or...
0: तो ये tensions हैं.
1: हाँ, तो जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural. Natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है. You know, natural means what? जैसे चलना natural है. भागना
0: unnatural.
1: Natural is walking, yeah. तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड, एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग, दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है, और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी ना किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में। तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कंफर्टेबल, आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कंफर्टेबल। अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माय नेचुरल।
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना है, दिस इज अ रॉन्ग।
1: क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे। आप देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 point something और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है, दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे, 100 जैसे ही क्रॉस हो गया आप क्रोसिन लेंगे। यू सी, यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल, आई नीड दैट नॉलेज,
0: प्रोसेस वी हैव एक्चुअली टेकन इट कि टेंशन नॉर्मल है।
1: अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए, आप क्रोसिन लेते हैं, क्यों, रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है क्योंकि कल you know I have to get back to work. अब tension है बढ़ रही है, day by day it's getting, लेकिन हम उसके लिए कोई treatment नहीं ले रहे,
0: नहीं ले रहे
1: क्यों, क्योंकि हमने सोचा यही natural है। तो उसको जब natural के parameter पर ले आए, तो acceptance हो गई कि ये तो natural है।
0: अच्छा, उससे this is wrong belief and then the thought creates,
1: yeah, तो tension, अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी belief को check किया, and I start telling myself this is unnatural, this is uncomfortable, this is causing pain, I don't want it, then I will start thinking na ki isko kaise finish karna hai, or whatever, matlab main ilaaj ki taraf dhyan dena shuru karu tab jab pata chale ki bimari hai, lekin bimari ko hi normal samajh liya to ilaaj ke bare mein nahi sochenge,
0: very good,
1: wo ek wrong belief hamari puri jeevan चिंता में बीत सकती है, क्योंकि हमने स्वीकार किया कि ये बीमारी नहीं है, ये ही स्वस्थ स्थिति है,
0: और वही हमारी डेस्टिनी बनती है।
1: बिल्कुल, पूरा जीवन,
0: पूरा प्रोसेस की,
1: पूरा जीवन हम चिंता में ही बीतेंगे।
0: अगर ये हमारा थॉट आ गया कि भाई यही थॉट ने फिर हमारा जो पूरी फीलिंग को जनरेट किया, पर्सनालिटी गई, एंड देन डेस्टिनी,
1: एंड हर स्टेप पे आप टेंशन क्रिएट कर लेंगे अपने आप से जल्दी से।
0: अच्छा, टेंशन से ही जुड़े हुए कई और मुद्दे हैं, टेंशन इज नॉर्मल ये हमने माना, दूसरा ये हम मानते हैं कि अगर हमें टेंशन है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हर परफॉर्मेंस से पहले टेंशन होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, स्टेज पे जाना है, थिएटर परफॉर्म करना है, गाना गाना है, यू शुड बी टेंस, बट आई इज इट अगेन,
1: क्योंकि मेजोरिटी पीपल टुडे फील कि अगर टेंशन नहीं होगी तो दैट इज आराम पसंद, यू नो, या कॉम्प्लेसेंसी, कि आप बिल्कुल लेड बैक हो जाएंगे, और अगर आप लेड बैक हो गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दे वॉन्ट टेंशन टू क्रिएट दैट पुश
0: एनर्जी लेवल
1: इनसाइड, या उसको एड्रेनालिन ट्रिगर होता है ना अंदर आपके। इवन एक बच्चा अगर आराम से बैठा है और कल उसका एग्जाम है, तो उसको बोला जाएगा तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हें एग्जाम है ना। एज अ ग्रोन अप हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस रिलैक्सेशन के अंडर होगी। ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, लेकिन एग्जाम के दिन वो टेंस्ड हो गया, तो वो सब किए कराई चीज भूल जाता है। हम केयरलेस मिस्टेक्स कराते थे स्कूल में, आई स्टिल रिमेम्बर, जी आता सब था,
0: लेकिन
1: एग्जाम के बाहर आने के बाद आपको लगता है ओहो ये गलत लिख दिया, आता सब था, एंड देन वी यूज्ड टू गिव इट द टर्म केयरलेस मिस्टेक। व्हाट इज केयरलेस मिस्टेक? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब एफिशिएंसी लेवल वाज डाउन, सब कुछ आते हुए गलत लिखा हाथ ने, कंसंट्रेशन लेवल वाज डाउन, क्योंकि टेंशन,
0: एंजाइटी।
1: तो एंजाइटी परफॉर्मेंस को बढ़ा कैसे सकती है, इनहांस कैसे कर सकती है? वो तो हमेशा परफॉर्मेंस को डाउन ही लेकर जाएगी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस, आप जॉब करते हैं, आपको टेंशन है छोटी छोटी बातों की, वेदर इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स वर्क, तो जैसे ही टेंशन होती है माइंड की स्थिति कैसे हो जाती है, क्या फील करते हैं?
0: एनर्जी लेवल आपका लो हो जाता है, यू कांट परफॉर्म,
1: राइट? आपकी एकाग्रता शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, निर्णय लेने की शक्ति,
0: डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे,
1: मेमोरी पावर,
0: फोकस
1: लूज हो जाएगा, मेमोरी पावर, आप यू विल टेंड टू गेट लिटिल इरिटेटेड मोर ऑफन, तो उससे आपके रिलेशनशिप्स, जब ये सब फैक्टर्स प्ले करते हुए अगर कोई कहे कि माय परफॉर्मेंस विल इंप्रूव व्हेन माय कंसंट्रेशन विल रिड्यूस,
0: हाउ विल
1: माय परफॉर्मेंस इंप्रूव,
0: एंड फाइनली टेंशन समवेयर हमें हेल्थ की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है उसको परेशान कर सकते हैं।
1: तो इतने आज जितने जैसे अगर आप स्टडी देखें कि इतनी एब्सेंटिज्म जो हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इतनी बीमारियों की वजह से हो रही है, इट्स मोर बिकॉज द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मानसिक जो दर्द है, मानसिक जो बीमारी है उसकी वजह से वो शरीर के ऊपर असर ले रही है। तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है, मुझे ब्लड प्रेशर आज हो जाए मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो सकती है? एंड यही अगर हम रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन वो क्यों एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना, प्रेशर और टेंशन ये दो चीजों को हमने मिक्स कर दिया। प्रेशर चाहिए, टारगेट चाहिए,
0: पुश करने के,
1: यू नो इवन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर या इवन फॉर अ स्टूडेंट हमें टारगेट चाहिए, जैसे एग्जाम है, ये एक टारगेट है, एग्जाम होता है तभी बच्चे पढ़ते हैं मेजोरिटी, अगर एग्जाम नहीं होता तो शायद हम उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम देने के लिए मुझे टेंशन चाहिए, दिस इज अननेसेसरी। सिमिलरली एक ऑफिस में एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, आपको इस इतनी सेल्स अचीव करनी है या व्हाटएवर करना है, लेकिन वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप रिलैक्स्ड होकर उसको अचीव करें या टेंस्ड रहकर उसको अचीव करें, ये हमारी चॉइस।
0: एक्चुअली एक और चीज ये कही जाती है कि टेंस रहेंगे तो आप माहौल भी टेंस क्रिएट कीजिए, एंड एवरीबॉडी विल बी टेंस एंड देन परफॉर्म करेंगे, बट आई थिंक समवेयर द ओवरऑल जो पूरा एटमॉस्फेयर,
1: ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, यू नो बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे चेंज होते हैं, वी विल हैव टू ट्राई इट आउट। हमने दूसरा वाला शायद बहुत टाइम से देखा ही नहीं, आराम से काम होता कैसे है, और अभी का बिलीफ सिस्टम ये होगा आराम से काम नहीं होगा जी,
0: शोर मचाना,
1: अगर शोर नहीं मचाएंगे जी कोई सुनेगा नहीं, तो ये जो बिलीफ सिस्टम सारे, वी हैव टू वर्क इट आउट एंड चेक इट, बिकॉज विद द दीज बिलीफ सिस्टम्स वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई द अदर वन, फिर देखें अगर वो वाला नहीं ठीक लगा, गो बैक टू द ओल्ड वन, लेकिन इट विल वर्क,
0: एंड इन फैक्ट ऑफ कोर्स इट शुड वर्क बिकॉज़ इट हैज लॉजिक,
1: एब्सोल्युटली।
0: अगर हम उसको लॉजिकल, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम सोचने लग जाएं, जो हमारी मान्यताएं बन चुकी हैं,
1: right.
0: उनमें अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा

0: बंद कर दो.
1: मतलब मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूं, यू नो कि लाइक ओहो प्लीज देयर इज टू मच ऑफ टेंशन, यू नो
0: इनसे नहीं मिलना, इनके पास नहीं जाना. सही बात है. कई बार लोग अपनी जॉब चेंज कर देते हैं कि इस जॉब में बहुत टेंशन है.
1: नो बट देन इज इट एस्केपिज्म रियली?
0: इट इज, बिकॉज उसके पहले एक और बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये बिलीफ जनरेट हो रहा है, और वो बिलीफ ये है कि दूसरे लोग मेरी टेंशन का कारण है. तभी तो मैं उन लोगों से किनारा करूंगी ना. अगर मुझे लगे आप मेरी टेंशन का कारण है तो बार बार आपसे मिलूं मैं टेंस्ड हूं, इससे अच्छा मैं आपसे मिलना बंद कर दूं. क्यों? क्योंकि मैंने समझा आप मेरी टेंशन का कारण है. आप अभी आधे मिनट के लिए ट्राई कीजिए कि वर्तमान समय, एवरीवन कैन ट्राई आई थिंक, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्तमान समय मेरे जीवन में तनाव के कौन कौन से कारण है, बहुत छोटे से लेके बड़े तक. द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड. जो हम रीजन निकालेंगे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, सास बहू, पति, बच्चे, बॉस, व्हाटएवर, फाइनेंशियल क्राइसिस, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी. बट द रीजन विल ऑलवेज बी आउटसाइड. तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया, एंड ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सबसे बड़ा, कि माय स्टेट ऑफ माइंड इज बीइंग कंट्रोल्ड by other people and other situations.
1: Is being dependent on them.
0: It's totally. मैं बिल्कुल ठीक थी, आपसे मिली मुझे गुस्सा आ गया. मैं बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, आपने गलत कर दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया.
1: मैं तो ठीक ठाक थी, उसने कह दिया मुझे, तो मुझे इरिटेशन हो गया.
0: आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आप मुझे अपसेट करते हैं. यू आर द कॉज ऑफ माई पेन. You are the cause of my suffering.
1: But how to remain unaffected, actually?
0: No, it's not the question of affected. It is first the question, is the other person the source? I will have to understand that. Evaluate any scene before yourself. Kya dusra vyakti source hai? When we work on this, what we understood was, dusre ne jo kehna tha, usne wo keh diya. Jo karna tha, usne wo kar diya. Uski baat ko lekar, now what I do with it,
1: how do I handle it,
0: is going to create my pain or pleasure or happiness or
1: destiny.
0: Sadness, whatever.
1: Again,
0: everything
1: destiny.
0: My thought. It is not what you say to me, but it is what I do with what you say to me. You see, you will say and walk off, you finished your part. Ab main us baat ko lungi aur us baat ko किस तरह से परसीव करूंगी, किस तरह से समझूंगी, और उसको किस तरह से एनालाइज करके उसको बार बार रिपीट करती रहूंगी अंदर. इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, एंड देन आई जनरेट माय फीलिंग आउट ऑफ इट. तो इट्स नॉट व्हाट यू सेड एंड यू वेंट अवे. आप साइंस में भी देखेंगे तो टेंशन का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस का, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो प्रेशर बाहर से आएगा, यस इट प्लेज अ लिटिल रोल, क्योंकि वो स्टिमुलस है, डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो हमें यही सिखाया जाता था तब कि अलग अलग मेटल्स हैं, एक शीट्स है मेटल के, और हर मेटल की शीट पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग निकलता था. क्यों? प्रेशर तो सेम था, क्योंकि डिनोमिनेटर प्ले कर रहा है. तो डिनोमिनेटर था रेजिलियंस, उस मेटल की उस स्ट्रेस को फेस करने की पावर
1: इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था. इनफैक्ट
0: तो प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन रेजिलियंस डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर डिफरेंट निकला. एंड सेम इज एप्लीकेबल टू अस. एक ऑफिस में भी आप देख लीजिए, एक ही बॉस है, 10 जूनियर्स है, एक ही बॉस एक ही तरह से सबको डांटता है, लेकिन सबका रिएक्ट करने का तरीका
1: डिफरेंट है.
0: अगर बॉस कारण है उनकी टेंशन का, तो हर एक को इक्वल लेवल ऑफ टेंशन होनी चाहिए ना. बॉस तो एक ही था, आप सबने गलती भी एक ही कर दी, वो आए आप सबको डांट के चले गए, लेकिन आप सबने जो रिस्पॉन्ड किया,
1: जो रिएक्ट किया,
0: वो डिफरेंट था. एंड अगर 10 लोग होंगे तो 10 अलग अलग रिस्पॉन्स निकलेंगे, क्योंकि द रिस्पॉन्स इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टिमुलस. जो बॉस आया बाहर से, ही वॉज द स्टिमुलस, एंड हमने जो रिस्पॉन्ड किया, दैट्स द रिस्पॉन्स. लेकिन वो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स, उसके बीच में है फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स.
1: सो ओके, व्हाट वी गैदर एक्चुअली शिवानी विद आज की जो बातचीत है, उससे ये कि हमने आज एक बार फिर उस बात को जानने की कोशिश की कि हमारे थॉट्स जो जनरेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस से गुजर के हमारे डेस्टिनी गवर्न कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी लिखते हैं. दिस इज समथिंग अमेजिंग, बट देन दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली सीन, यू नो, कि एक थॉट जो, और अब मुद्दे की बात ये आती है कि थॉट जो जनरेट कर रहे हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम.

0: कर रहे हैं, जितने भी हम बिलीफ सिस्टम्स में जी रहे हैं, अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं, हम उन्हें ही सही मानकर चल रहे हैं, तो हमारे थॉट्स भी वही हो रहे हैं. अब एक और बात जो है कि थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, उसमें आपने कुछ तीन बातें बताई हमें.
1: पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम. जो भी हम अंदर इन्फॉर्मेशन समाचार इधर उधर से भरते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव है किसी के साथ, ये तीनों चीजें हमारे संकल्प की क्वालिटी को
0: और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं. सही बिलीफ सिस्टम. और आज जो मुद्दा था वो टेंशन थी, यू नो, कि कहीं ना कहीं बहुत सी गलत मान्यताओं को लेके हम टेंशन के साथ जी रहे हैं. सबसे बड़ी गलत मान्यता जो नजर आई वो ये थी कि टेंशन नॉर्मल है.
1: राइट, बिल्कुल
0: सहज है. तो वो नहीं है सहज. हमें ये जानना है कि अगर हमें टेंशन हो रही है तो वो सहज नहीं है, वो असहज है, एबनॉर्मल है, उसे चेंज करना
1: है
0: और उसे चेंज करना जरूरी है. एंड अनदर थिंग व्हिच वी अंडरस्टूड टुडे इज लाइक कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे इस सिचुएशन के लिए या हमारी टेंशन क्रिएट करने के लिए. हम ही कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस सिचुएशन को, वो टेंशन क्रिएट करता है. तो चलिए ये बात, क्योंकि अब वक्त कम है, यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी. लेकिन इससे जुड़े बाकी मुद्दों को भी अगली कड़ी में हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: ओम शांति. और इसके साथ आपको भी बता दें कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आप ही का प्रोग्राम है. अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा जज्बा है जो कुल बुला रहा है, जो कहना चाहते हैं आप कुछ, तो आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर टेंशन अपनी जिंदगी में हम नहीं रखेंगे और अगली कड़ी में इसी से जुड़े कुछ और खास मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे. और जो कुछ हम इस पूरी जो पूरा प्रोग्राम है उसमें जान रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं. और अगली कड़ी में शिवानी जी, हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो ईमेल्स आए हैं उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करें. तो आप दीजिए इजाजत. नमस्कार.